0: The Milky Way, a podcast about the universe.
1: Kanal K.
2: Hello everyone. Aaj humare saath hain Professor Divya Oberoi from National Center for Radio Astrophysics, TIFR, Pune. He studies our sun. So aaj hum unse baat karenge ki humare sun ke baare mein wo kaise study karte hain aur usme janne ke liye kya kya hai. Thank you so much for joining us, Divya.
3: Thank you so much, Tejpreet. It's my pleasure to be here. Bahut dhanyawad aapka ki aapne mujhe iske liye aamantrit kiya. So let's get started.
2: तो हमारे लिसनर्स को पहले तो आप ये बताइए कि हम सन को हर रोज देखते हैं हमारे स्काई में.
3: जरूर यार.
2: तो सन के बारे में और ऐसा क्या जानना है हमें कि उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ रही है हमें?
3: आपका बहुत ही अच्छा सवाल है कि सूरज तो हमें रोज दिखाई देता है, हजारों सालों से हम देख रहे हैं, इसके बारे में ऐसा क्या बचा है जो हमें अभी भी जानना है? तो इस जवाब के कुछ अलग अलग हिस्से हैं. एक हिस्सा इससे संबंधित है कि आजकल आप जानते हैं कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में सैटेलाइट्स का प्रयोग बहुत बढ़ गया है, राइट. हम कहीं पे भी जाना है फटाफट GPS लगा के रास्ता देखते हैं. जो हमारे घर में टेलीविज़न आ रहा है वो सैटेलाइट टेलीविज़न के थ्रू आ रहा है.
2: बिल्कुल.
3: और बहुत सी सर्विसेज के लिए हम सैटेलाइट्स का प्रयोग करते हैं. ये सैटेलाइट्स जो हैं ये पृथ्वी की सतह से कई सौ, कई बार कुछ हज़ार किलोमीटर या कई हज़ार किलोमीटर ऊपर भी हो सकते हैं. और सूरज से लगातार एक गैस निकल रही है जो बाहर सब दिशाओं में प्रवाहित हो रही है. उसको सोलर विंड कहते हैं. लगभग 350-400 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये गैस बाहर जा रही है.
2: कैन वी फोकस ऑन दैट वंस अगेन? 400 किलोमीटर
3: प्रति सेकंड.
2: प्रति सेकंड, ओके.
3: ठीक है. तो इस गैस के द्वारा जो सूरज का प्रभाव है वो सौर्यमंडल में जितने भी ग्रह हैं सब तक पहुंचता है, पृथ्वी तक भी पहुंचता है. अब ये जो ऊपर सैटेलाइट्स हैं ये उनको ज़्यादा प्रभावित करता है क्योंकि नीचे पृथ्वी की सतह के पास तो हमारा एटमॉस्फेयर है, वातावरण है हमें बचाने के लिए. इतना ऊपर जाते जाते वो वातावरण जो है बहुत क्षीण पड़ जाता है, बहुत हल्का पड़ जाता है. हम जानते हैं कि एवरेस्ट पे ही सांस लेने में दिक्कत हो जाती है ना, 8700 कुछ मीटर की ऊंचाई पर. हम तो यहाँ पे कई सौ या कई हज़ार किलोमीटर की बात कर रहे हैं. तो ये जो सोलर विंड है और सोलर विंड के साथ साथ जो और सूर्य का प्रभाव आता है उसका प्रभाव इन सैटेलाइट्स पर बहुत पड़ सकता है. तो एक बड़ा कारण आजकल सूरज के अध्ययन के लिए ये है कि इस प्रभाव को अगर हम उसके वहाँ पहुँचने से पहले उसके बारे में अगर हम जानकारी दे पाएं तो फिर हम अपने इन सैटेलाइट्स को इससे कुप्रभावित होने से बचा सकते हैं. इस पर बुरा प्रभाव होने से पहले हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो उनको नुकसान ना पहुँचे. तो ये तो एक बहुत प्रैक्टिकल कारण है जिसकी वजह से हमें सूरज का अध्ययन करना चाहिए. इसके अलावा कुछ कारण ऐसे हैं जो कि सॉर्ट ऑफ प्योर साइंस से संबंधित हैं. जैसे यू नो किसी ने आई थिंक एडमंड हिलेरी से पूछा था कि व्हाई डू यू क्लाइम माउंटेंस और व्हाई डिड यू क्लाइम द एवरेस्ट. तो उनका जवाब था बिकॉज इट इज़ देयर, राइट. कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आप सिर्फ इसलिए जानना चाहते हैं कि आपकी जानकारी में बढ़ोतरी होगी, जो आपके अंदर की उत्सुकता है वो शांत होगी, राइट. मैन इज़ ए क्यूरियस एनिमल. ये तो सूरज की इंटरनल वर्किंग्स के बारे में हमें अभी भी बहुत कुछ नहीं पता. तो जैसे शायद अधिकतर दर्शकों को पता होगा कि सूरज की साइकिल्स होती हैं, सोलर एक्टिविटी की साइकिल्स हैं. सूर्य के ऊपर छोटे छोटे धब्बे जैसे उभरते हैं जिनको हम सन स्पॉट या एक्टिव रीजन कहते हैं, और इनकी 11 साल की साइकिल है. तो थोड़े ज़्यादा होते हैं मात्रा में, धीरे धीरे कम होते हैं और लगभग 11 साल बाद पहले जैसे हो जाते हैं. ये साइकिल क्यों है, 11 साल की ही क्यों है, अगला धब्बा कहाँ पे होगा और उसका कैसा इवोल्यूशन होगा, ये सब अभी हमारे को समझने के लिए अभी थोड़ी कसर है. तो ये भी एक आयाम है जिसके अध्ययन के लिए हम सूरज को स्टडी करते हैं.
2: थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से हमें ओवरव्यू दे दिया है. बट इसमें बहुत सारे जो आपने शब्द बोले हैं उनके बारे में हम एक एक करके आपसे सवाल पूछेंगे कि
3: जरूर है.
2: कि कैसे हो रहा है. तो एक तो आपने हमें बताया कि जो हमारे सैटेलाइट्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए हमें सन के बारे में स्टडी करना पड़ रहा है.
3: जी.
2: तो आपने बताया कि वहाँ से विंड आ रही है, कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम अपने सैटेलाइट्स को बता पाएं कि वो उनको कैसे ऊपर होना है, नीचे होना है, या क्या चेंजेस करने हैं अपने बात में. तो इज इट समथिंग सिमिलर टू जैसे हम पृथ्वी पे करते हैं, हमारी अर्थ पे करते हैं कि वेदर फॉरकास्ट हो रहा है, तो वहां पर भी क्या ये स्पेस वेदर के अंडर आता है?
3: बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, इसको स्पेस वेदर ही कहते हैं। लेकिन जैसे हम पृथ्वी पे वेदर प्रिडिक्शन अभी कर पाते हैं, स्पेस वेदर प्रिडिक्शन से हम थोड़ा दूर हैं अभी। लेकिन हम स्पेस वेदर की नावकास्टिंग कर सकते हैं। नावकास्टिंग का क्या मतलब हुआ कि सूरज पे कुछ हुआ, हमारे जो टेलीस्कोप्स हैं, चाहे वो पृथ्वी पे हैं चाहे स्पेस में हैं, उन्होंने उसे देखा, उसके सहारे वो बता सकते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। कि सूरज से जो भी ये डिस्टर्बेंस था, मान लीजिए एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ सूरज पे, उसको हम लोग कॉरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं। इसमें बहुत सा मैटर, प्लाज्मा, मैग्नेटिक फील्ड सूरज से बाहर की तरफ निकलता है और बहुत ही तेज़ गति से निकलता है, 1000 या लगभग 2000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से भी निकल सकता है। लेकिन फिर भी पृथ्वी और सूरज के बीच का जो अंतर है वो इतना ज़्यादा है, 150 मिलियन किलोमीटर, कि उसको पृथ्वी तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है।
2: क्योंकि लाइट को भी समय लग रहा है,
3: लाइट को 8 मिनट लगते हैं, हाँ इसको लगभग 1 दिन लग जाता है अगर वो बहुत तेज़ी से भी आ रहा है तो भी, और जो नॉर्मल गति से आता है उसको लगभग 4 दिन लग जाते हैं। तो इतना समय हमारे पास है अपनी तैयारी करने के लिए कि जो भी ये आ रहा है इससे हमें कैसे निपटना है। नॉर्मली ये आकार में इतने बड़े होते हैं कि जैसे मतलब बारिश में आप छाता लेके निकल सकते हैं, इसके लिए हमारे पास छाता नहीं है। तो जो भी हो रहा है वो सैटेलाइट को, आपके सैटेलाइट को उसे झेलना तो पड़ेगा। लेकिन आप अपने सैटेलाइट को कुछ सेफ मोड में डाल सकते हैं कि वो उस वक्त कुछ सेंसिटिव काम ना करे, या उसके जो सोलर सेल हैं हाँ उनकी आप ओरिएंटेशन ऐसी कर सकते हैं कि जो ड्रैग है, क्योंकि उस थोड़े समय के लिए वहाँ की डेंसिटी एटमॉस्फेयर की उस हाइट पर भी डेंसिटी बढ़ जाएगी, और उसमें अगर ये सोलर सेल जो हैं उस दिशा के विपरीत जा रहे हैं तो ड्रैग बढ़ेगा, है ना, जैसे जैसे शिप का सेल होता है वो हवा के सहारे शिप को चला देता है ना, तो वो बढ़ेगा तो सैटेलाइट का ऑर्बिट थोड़ा सा नीचे आएगा। तो वो सब कुप्रभाव ना हो इस तरह के हम कुछ करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। तो ये अभी इन्फेंसी में है, ऐसा अभी हम सच में कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा करना चाहते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए अभी हमें स्टडी जो है सूरज की, इन सब फिनोमेना की, ये करनी अभी आवश्यक है। तो यस, ये है स्पेस वेदर रिलेटेड काम।
2: तो आपने मेंशन किया कि ये जो विंड आ रही है
3: जी,
2: उसकी वजह से ये सारे के सारे इफेक्ट्स होते हैं
3: जी।
2: तो ये विंड में होता क्या है, हाउ डज इट वर्क एक्चुअली?
3: सो विंड इज जस्ट द एटमॉस्फेयर ऑफ द सन व्हिच इज स्लोली फ्लोइंग अवे फ्रॉम द सन। इट्स कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड, सो उसमें मेनली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, थोड़े से हीलियम के उसमें एटम्स हैं, और बहुत ही थोड़ी मात्रा में हेवियर एलिमेंट्स भी हैं उसमें, आयरन, सल्फर, मैग्नीशियम, ये सब एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन बहुत ही थोड़ी मात्रा में कार्बन। तो ये उसका कॉम्पोजिशन है। इसके साथ साथ उसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी है, क्योंकि सूरज की सतह पर मैग्नेटिक फील्ड है, जब ये पार्टिकल सतह से निकल के आगे चलते हैं तो अपने साथ वो मैग्नेटिक फील्ड को खींच के लेके आते हैं। आप ऐसा मान सकते हैं जैसे मेरे पास एक माला है, माला में मैंने मोती पिरोए हुए, अगर मैं मोती को हिलाऊंगा तो साथ में माला का धागा भी आएगा।
2: True.
3: तो ये माला जो है ये मेरे मेरा प्लाज्मा है, इलेक्ट्रॉन्स हैं आप कह लीजिए, और जो धागा मैंने उनमें पिरोया हुआ है, सॉरी ऐसा कहना चाहिए कि जो ये, मैं थोड़ा सा हिस्सा रिपीट करता हूँ। हाँ, आप ऐसा मान लीजिए कि ये जो मोती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें जो धागा मैंने पिरोया हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं मोती को हिलाऊंगा तो वो अपने साथ धागे को लेके आएगा।
2: ट्रू,
3: है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब वहां से चलते हैं, सूर्य के पास से चलते हैं बाहर निकलने के लिए, तो अपने साथ ये मैग्नेटिक फील्ड को खींच के लेके आते हैं।
2: तो जो जब ये आ रहे हैं साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है।
3: बिल्कुल,
2: आई सी। तो जो हम नॉर्मली कह देते हैं कि स्पेस इज एम्प्टी, सो दैट्स नॉट ट्रू इन दैट वे।
3: सो नाउ यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज एम्प्टी। स्पेस इज एम्प्टी का मतलब ये है कि स्पेस की में जो डेंसिटी है, हमें हमारे आसपास, हमारे वातावरण में, इस कमरे में जो हवा है उसके मुकाबले बहुत कम है। हाँ, यहाँ पे रफली 23.3 लीटर्स में 10^23 पार्टिकल्स हैं, एवोगैड्रो नंबर, करेक्ट है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के जस्ट ऊपर देर आर अबाउट 8 पार्टिकल्स पर सेंटीमीटर क्यूब।

0: empty.
1: So I'm saying, like, we cannot call it empty because it is affecting the things which are
0: affecting
1: out there.
0: Us because there is the volumes involved are so large. हालांकि एक सेंटीमीटर क्यूब में 8 ही पार्टिकल है, लेकिन इतना ज्यादा उसका वॉल्यूम है कि वो सब मिलके हमारे ऊपर बहुत प्रभाव कर सकते हैं।
1: I see. तो एक तो ये हो गया कि हमारे सैटेलाइट्स को ये इफेक्ट कर रहा है।
0: जी।
1: एक हम ऑरोरास की भी बात करते हैं कि जो बहुत सुंदर लाइट्स दिखते हैं पोल्स के ऊपर, तो क्या वो भी इसी से लिंक्ड है?
0: बिल्कुल। सो ऑरोरा की जो रोशनी हमें नजर आती है उसमें ये पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का योगदान रहता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स आर लाइक हाईवेज ऑन विच दीज चार्ज पार्टिकल्स कैन मूव। ठीक है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड अपने साथ पार्टिकल अपने साथ मैग्नेटिक फील्ड को लेके आएगा, है ना? तो पार्टिकल वहीं जा सकता है जहां मैग्नेटिक फील्ड ले जाएगा उसे, या फिर पार्टिकल में एनर्जी ज्यादा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को खींच के भी अपने साथ ले जा सकता है, लेकिन उसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। पृथ्वी का भी मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? हमें पता है कि पृथ्वी पर हम कंपास इस्तेमाल करते हैं, नॉर्थ कहाँ है वो लगभग बताती है ना? और जो बाहर से ये सोलर विंड में आ रहा है मैटर, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड है। हमें ये भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट, है ना? हमें ये भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट, लाइक मैग्नेटिक फील्ड्स रिपेल, है ना? ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड्स अट्रैक्ट। तो अब बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर तो ये एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं, तो जो बाहर से एनर्जेटिक पार्टिकल्स आ रहे थे वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में नहीं घुस पाएंगे, वो आसपास से गुजर जाएंगे, एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा धक्का देके उसको थोड़ा सा पिचका के स्क्वॉश करके निकल जाएंगे। लेकिन अगर उस मैग्नेटिक फील्ड की कॉन्फिगरेशन ऐसी है कि जो पृथ्वी वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये पार्टिकल्स जो हैं पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश कर सकते हैं। और फिर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लेके जाएगा उनको? जहाँ पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, पोल्स के पास, है ना? तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों तरफ फिर ये एनर्जेटिक पार्टिकल्स ये मैग्नेटिक फील्ड द्वारा वहाँ पे फनल होते हैं। वहाँ पे फिर ये कुछ जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स जो हैं हमारे एटमोसफेयर में जो एटम्स हैं उनके साथ टकरा कर उनको आयनाइज करते हैं, और वो जो आयनाइज्ड एटम्स हैं जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो रोशनी छोड़ते हैं जो हम ऑरोरा के रूप में देख पाते हैं।
1: तो जो कलर्स हैं वो आ हमारे एटमॉस्फेयर से ही रहे हैं, बट दे आर कमिंग बिकॉज ऑफ दीज एनर्जेटिक पार्टिकल्स। आई सी, दे आर ब्यूटीफुल।
0: यस, आई एम होपिंग टू सी देम समटाइम। आई नो यू हैव हैड एन अपॉर्चुनिटी टू सी देम।
1: यस, दैट्स व्हाट, लाइक व्हाइल यू आर सेइंग, मुझे वही याद आ रहा था कि बहुत ही सुंदर था। ओके, कमिंग बैक टू प्रेजेंट, तो आपने दो तीन चीजें मेंशन करी थी जब हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि हम सन को क्यों स्टडी करना चाहते हैं। उसमें एक बात आई थी सोलर साइकिल की।
0: जी,
1: तो सोलर साइकिल क्या होता है?
0: ठीक है, तो जैसा साइकिल शब्द आपको बता रहा है कि कोई ऐसी चीज है जिसमें उतार चढ़ाव हो रहा है।
1: जी,
0: राइट। वो किस चीज में उतार चढ़ाव हो रहा है? वो उतार चढ़ाव हो रहा है कि सूरज के ऊपर कुछ आप कह सकते हैं काले धब्बे से दिखाई देते हैं। अगर हम सूरज को कभी भी कृपया आंख से सीधा ना देखें, है ना, हमेशा, हाँ, प्लीज आप इस बात का बहुत ध्यान रखें, सूरज की तरफ सीधा कभी ना देखें, या तो सूरज के प्रोजेक्शन को देखें या फिर खास फिल्टर्स आते हैं जिनका प्रयोग करके आप सूरज को देख सकते हैं। तो अगर आप सूरज को देखें तो आप पाएंगे कि उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे काले धब्बे, खासतौर पर छोटे से टेलीस्कोप से भी देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली वो नजर आएंगे। उनको हम कहते हैं एक्टिव रीजन्स या सनस्पॉट्स। असल में अब हम जानते हैं कि ये जो सनस्पॉट्स हैं दीज आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, लेकिन इनका नंबर एंड वेयर दे आर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द सन, दैट इज वॉट इज फॉलोइंग अ साइक्लिक अपियरेंस। हाँ, तो साइकिल के शुरुआत में वो लगभग 35-40 डिग्री लैटिट्यूड पे अपियर होते हैं, धीरे धीरे धीरे वो इक्वेटर की तरफ जाते हैं और फिर लगभग ख़त्म हो जाते हैं, और फिर अगली साइकिल जब शुरू होती है तो फिर से वो 30-35 डिग्री 40 डिग्री लैटिट्यूड पे अपियर होते हैं और फिर धीरे धीरे दे स्टार्ट मार्चिंग टूवर्ड्स द पोल्स, टूवर्ड्स द इक्वेटर, and then the cycle again comes to an end.
1: And it takes 11 years.
0: It takes roughly 11 years. So, अगर आप पुरानी solar cycles देखें तो लगभग सबसे छोटी solar cycle लगभग 9 साल के आसपास की थी, सबसे लंबी लगभग 14 साल की थी. So, it is not a very precise cycle.

0: अगर आप उनकी पीक्स और वैलीज कंपेयर करें, हाँ, तो कुछ सोलर साइकिल्स की पीक्स यानी कि कितने सनस्पॉट थे मैक्सिमम, हाँ, या रादर सूरज के सरफेस का कितना हिस्सा सनस्पॉट्स ने कवर किया था, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, हाँ, तो उसमें वेरिएशन बहुत है.
1: आई सी. जी, तो जो ये आपने सनस्पॉट्स के बारे में एक्सप्लेन किया और जो हम सोलर विंड के बारे में बात कर रहे थे, तो इन दोनों में कुछ रिलेशन है क्या, या फिर दीज टू आर इंडिपेंडेंट फिनोमेना?
0: नहीं, इन दोनों में सर्टनली रिलेशनशिप है, इन द सेंस कि जो सोलर विंड सूरज से शुरू होती है, हाँ, वो इससे प्रभावित है कि सूरज के सरफेस पे, सूरज की सतह पे उस समय क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हाँ, और कितना स्ट्रांग है. हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक अ हाईवे, या वो माला की धागे की तरह है वगैरह, है ना. जहाँ पे ये सनस्पॉट होते हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्लोज्ड होता है कि एक तरफ से निकला, ऊपर गया और वापस आ गया. तो उन हिस्सों से ये सोलर विंड जो है वो तेज गति से नहीं निकल पाती है, क्योंकि उसने तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ ही चलना है. अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरा मुड़ गया और वापस सूरज की तरफ चला गया, तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस मैग्नेटिक फील्ड को बाहर खींच के लाने के लिए. लेकिन जहाँ पे ये सनस्पॉट्स नहीं है, हाँ, वहाँ पे काफ़ी सारा मैग्नेटिक फील्ड ओपन है. ओपन है मतलब कि वो सूरज से शुरू हो रहा है और सिर्फ बाहर की तरफ जा रहा है. वहाँ पे ये सोलर विंड के लिए अच्छे प्रवाह से, अच्छी गति से चलना संभव है. तो उस इलाके में सोलर विंड की गति ज़्यादा होती है. अक्सर वहाँ पे डेंसिटी थोड़ी कम होती है लेकिन गति ज़्यादा होती है. तो ये इनका आपस में कुछ रिलेशनशिप है, सनस्पॉट्स का और सोलर विंड का.
1: आई गेस बहुत सारे लोगों के लिए ये भी एक नई बात होगी कि सन पे मैग्नेटिक फील्ड है, और वो भी इतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है कि हम वो वाला एस्पेक्ट कभी इतना बाहर नहीं आ पाता जनरल बातों में.
0: जी, yeah.
1: तो हम सन को स्टडी कर रहे हैं इन सब कारणों की वजह से, बट ये करते कैसे हैं?
0: एक कारण मैं और जोड़ सकता हूँ.
1: sure, sure,
0: हाँ, सूरज को अध्ययन करने का. हाँ, आजकल ग्लोबल वार्मिंग की बहुत बात होती है, राइट. ग्लोबल वार्मिंग में अधिकतर समय हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की, कि बाहर से एनर्जी आई और पृथ्वी पर पड़ी, पृथ्वी ने उसको इंफ्रारेड के रूप में रेडिएट किया. वो जो है, जो सेकेंडरी रेडिएशन ये है जो ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारे वातावरण में है उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली. और इस, क्योंकि इनकी मात्रा बढ़ रही है इसलिए इनकी एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ रही है, इसलिए एटमोसफेयर का तापमान बढ़ रहा है, ठीक है ना. लेकिन ये इस पे भी तो निर्भर करता है कि पृथ्वी पर कितनी एनर्जी आ रही है, राइट. जितनी आ रही है उसी का तो कुछ हिस्सा आप ट्रैप करेंगे.
1: आई एग्री,
0: है ना. तो इसलिए भी आजकल सूर्य का अध्ययन जो है थोड़ा और आवश्यक हो गया है कि हम ये जानें कि ये एनर्जी सोर्स, एनर्जी इनपुट इनटू द सिस्टम, हाउ मच इज दैट, राइट. और ये एनर्जी जो है सोलर साइकिल के साथ बदलती है. सोलर साइकिल की पीक पे थोड़ी ज़्यादा होती है, सोलर साइकिल के मिनिमा पे थोड़ी कम होती है. हालांकि ये अंतर बहुत छोटा सा होता है, लेकिन अभी हमारी स्थिति ये है कि ये छोटा सा अंतर भी हमारे लिए मायने रखता है. इसलिए इस कारण से भी सूरज का अध्ययन जो है वो आवश्यक है.
1: अच्छा, तो हमने बात करी कि जो सन है उसको अध्ययन करना क्यों ज़रूरी है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमने उसके जाने, तो बट सन को स्टडी किया कैसे जाता है, किस तरीके से हम उसके बारे में जान सकते हैं?
0: बहुत अच्छा सवाल है आपका कि किसी भी चीज़ का अध्ययन जो करना है हम कैसे करेंगे, है ना. तो मैं आपको एक उदाहरण के सहारे समझाता हूँ. मान लीजिए हम बीमार हुए, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कई तरह के सवाल पूछता है, पेट में दर्द है, जगह जगह दबा के देखता है, फिर वो बताते हैं आपको कि ये ब्लड टेस्ट कराओ, ये एक्सरे कराओ, या ये अल्ट्रासाउंड करा के आओ, है ना. ये सब डायग्नोज करने का तरीका है ना. वो पता लगाना चाह रहे हैं कि हमारे शरीर के किस अंग में किस तरह की परेशानी है. उसी तरह से हम सूरज को, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसके अलग अलग हिस्सों में देखते हैं. और आप एक डॉक्टर के नज़रिए से देखें तो ये उसका डायग्नोसिस के तरीके हैं. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है हमारा, जो यू नो हाई एनर्जी में आप जाएं तो गामा रेज से शुरू होता है, वहाँ से फिर एक्सरेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, और उसके बाद रेडियो. इसके, इस स्पेक्ट्रम के अलग अलग हिस्से हमें अलग अलग तरह की जानकारी देते हैं
1: सन के बारे में.
0: जिस भी ऑब्जेक्ट का आप अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में,
1: ठीक है.
0: उन सबको इकट्ठा करके हाँ. जैसे डॉक्टर अपनी रिपोर्ट्स को सबको इकट्ठा करके
1: डायग्नोसिस
0: पे अलग अलग टेस्ट कर लिए, दबा के देख लिया, सवाल पूछ के देख लिए, उसके सहारे वो अपने नतीजे पे पहुंचते हैं कि इस रोगी की क्या समस्या होगी. उसी तरह से हम ये अलग अलग चीजें इकट्ठी करके जितनी भी डिटेल डायग्नोसिस कर सकते हैं सूरज की, कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, कि यहाँ पे ऐसा मटेरियल होना चाहिए, उसका तापमान इतना होना चाहिए, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, इस दिशा में इतने इस गति से ये प्लाज्मा चलना चाहिए, ये सब जानकारी जो है हम इकट्ठी कर पाते हैं अलग अलग वेव्स में, अलग अलग हिस्सों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सूरज को देख के. उसमें जो मेरी जो स्पेशलाइजेशन है
1: वो
0: रेडियो ऑब्जर्वेशंस की तरफ है. तो जो रेडियो जो हमारे स्पेक्ट्रम का सबसे लंबी वेवलेंथ वाला हिस्सा है रेडियो वेव्स, वहाँ पे मैं काम करता हूँ.
1: आपने बताया कि आप रेडियो वेव्स में स्टडी करते हैं
0: जी.
1: तो रेडियो में हम कौन से फीचर्स, अगर हम ऐसे कह सकें कि सन का कौन सा हिस्सा हमें देखने को मिलता है, या फिर कौन से स्पेशल फिनोमिना सन के हमें जो देखने को मिलते हैं?
0: श्योर. तो आपने कभी एक्लिप्स के दौरान सूरज की फोटो देखी है?
1: यस.
0: क्या दिखाई देता है?
1: तो उसके चारों तरफ ऐसे एक रेज दिखाई देते, लाइट दिखाई देता है उसके चारों तरफ,
0: है ना? जब एक्लिप्स नहीं होता तो वो क्यों नहीं दिखाई देता?
1: प्रोबेबली बिकॉज़ सन इज टू ब्राइट.
0: करेक्ट, है ना? तो सूरज के आसपास का जो ये हिस्सा है, ये वही गैस है जहां से सोलर विंड शुरू होती है, हाँ, ये वही प्लाज्मा है. तो ये प्लाज्मा है, ये तो हमें बहुत समय से पता है, क्योंकि एक्लिप्स के समय हम फोटो देखते हैं सूरज की, तो पता लगता है कि वहाँ पे कोई तो चीज़ है जो असल में सूरज की ही रोशनी रिफ्लेक्ट करके हमारी तरफ फेंक रही है. वो तो हमेशा ही आ रही है हमारी तरफ, लेकिन जब सूरज एक्लिप्स में नहीं होता तो वो रोशनी बहुत धूमिल पड़ जाती है सूरज के मुकाबले, दिखाई नहीं देती. वही कारण है कि दिन में तारे नहीं दिखाई देते. ठीक है, ये जो कोरोना है, जैसा अभी हमने बात की कि जब सूरज एक्लिप्स में नहीं है तो दिखाई नहीं देता,
1: उसको कोरोना बोलते
0: उसको कोरोना, हाँ, ये जो सब गैस सूर्य के आसपास जो फैली हुई है इसको कोरोना बोलते हैं. कोरोना का मतलब ग्रीक में क्राउन.
1: आई सी. कोरोना वायरस आल्सो, इट वाज
0: कोरोना वायरस आल्सो, इट्स अनफॉर्चुनेट कि उसका नाम कोरोना दिया गया, लेकिन वो भी आप देखेंगे उसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फोटो तो वो किसी को उसमें मुकुट नजर आया, तो इसलिए उसका नाम वो हो गया. ठीक है, तो ये जो कोरोना है इसका अध्ययन जो है विजिबल रेज में तो हो नहीं सकता, या फिर आपको सिर्फ एक्लिप्स के दौरान वो करना पड़ेगा, या आजकल हम आर्टिफिशियली सैटेलाइट्स में एक्लिप्स क्रिएट करके भी हम देख पाते हैं. तो ये जो मटेरियल है यही तो वो मटेरियल है जहां पे स्पेस वेदर की उत्पत्ति होती है.
1: द एटमॉस्फेयर ऑफ द सन,
0: यू कैन कॉल इट द एटमॉस्फेयर ऑफ द सन. ठीक है, तो इट इज लेट्स से अ कोइंसिडेंस और एन एक्सीडेंट ऑफ नेचर कि अगर हम रेडियो फ्रीक्वेंसीज में अध्ययन करते हैं, खासतौर पे लो रेडियो फ्रीक्वेंसीज जिनको बोलते हैं, लगभग 300 मेगाहर्ट्ज और उसके छोटी फ्रीक्वेंसीज पे, तो आपको ये कोरोना दिखाई देता है. आपको इनफैक्ट ना सिर्फ कोरोना दिखाई देता है, कोरोना के अलावा कुछ खास दिखाई नहीं देता
1: आप
0: रेडियो में एट लो फ्रीक्वेंसीज. तो आप सोच सकते हैं कि सूरज के आसपास, जैसे पृथ्वी के आसपास वातावरण है, सूरज के आसपास वातावरण है, अलग अलग रेडियो फ्रीक्वेंसीज में उस वातावरण की अलग अलग परत मुझे दिखाई देती है. जैसे पृथ्वी पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हाइट के साथ साथ डेंसिटी कम होती जाती है, सूरज में भी ऐसा ही है, हाइट के साथ साथ डेंसिटी कम होती जाती है. और वो डेंसिटी कितनी है इस पे निर्भर करता है कि मुझे कौन सी वेवलेंथ पे या कौन सी फ्रीक्वेंसी में वो दिखाई देगा. तो इसलिए मैं अपनी रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे करके जो सूरज का एटमॉस्फेयर है उसमें अलग अलग जो परतें हैं उनका अध्ययन कर सकता हूँ, और वो किसी और तरह से देख पाना मुश्किल है. जैसे हड्डी टूटी या नहीं टूटी वो एक्सरे करके ही पता लगता है, किसी और तरह से पता नहीं चलता. तो उसी तरह से ये जो सूरज का एटमॉस्फेयर है उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसमें क्या टेम्परेचर है, इस तरह की चीज़ें जानने के लिए रेडियो ऑब्जर्वेशन सबसे सटीक तरीका है.
1: That's very interesting. तो अभी अगर हम सन की बात करें, सन पे रिसर्च की बात करें, तो अभी सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज क्या हैं इस फील्ड में?
0: तो अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो ये हमें लगभग 70-75 साल से पता है कि जो सूरज का एटमॉस्फेयर है कोरोना, हाँ, उसका तापमान लगभग 2 मिलियन केल्विन है. 2 मिलियन केल्विन.
1: एंड इफ वी वांट टू पुट इट इन अ रेफरेंस, सन की सरफेस का जो तापमान अगर मैं याद कर पा रही हूँ तो 5,000 to 6,000 केल्विन के करीब है.
0: ठीक है,
1: तो वो मिलियन डिग्री केल्विन है.
0: ठीक है, अब आपके मन में भी वही सवाल उठ रहा है, है ना, कि इतनी ठंडी चीज, ठंडी तो नहीं है, मतलब 6000 सेंटीग्रेड है, लेकिन इसके ऊपर मिलियन डिग्री का कोरोना कैसे बैठा हुआ है, जबकि हमें पक्का पता है कि जो ऊर्जा का स्रोत है वो तो सूरज की सतह के नीचे है, है ना, सेंटर ऑफ द सन, न्यूक्लियर एनर्जी, ऑल ऑफ दैट इज कमिंग आउट. सो वॉट इज हीटिंग अप दिस कोरोना हैज बीन अ मिस्ट्री. ठीक है, उसके कुछ क्या कहना चाहिए, थियोरीज या हाइपोथेसिस वो दिए गए हैं, जिसकी वजह से 6000 केल्विन की सतह के ऊपर ये मिलियन केल्विन कोरोना कैसे बैठा हुआ है ना. हालांकि हमें मालूम है कि एनर्जी का जो सोर्स है वो तो सतह के नीचे से आ रहा है.
1: इट्स टोटली ऑपोजिट टू द इंट्यूशन.
0: इट्स टोटली ऑपोजिट टू इंट्यूशन. इट इज अगेंस्ट द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना. हीट इज सपोज टू फ्लो फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कूलर बॉडी. ये तो उल्टा हो रहा है यहाँ पे. तो इस को सॉल्व करने के कुछ बहुत समय से प्रयास चल रहे हैं, बहुत सी प्रोग्रेस भी इस पे हुई है. अभी हमें ये पता है कि द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज हीटिंग दिस कोरोना अप इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सन.
1: ओके, द सेम मैग्नेटिक फील्ड दैट वाज रिस्पांसिबल फॉर द ब्यूटीफुल ऑरोरास.
0: करेक्ट, या
1: ओके,
0: है ना. सो मैग्नेटिक फील्ड हैज अ रोल टू प्ले इन एवरीथिंग विच हैपेंस ऑन द सन.
1: Okay.
0: So Eugene Parker, who's one of the, you know, best known solar physicists, he once said that if there was no magnetic field on the sun, it would be a very boring star. Okay, so that magnetic field has a lot of role to play in practically everything which is happening on the sun. यही magnetic field उस energy का reservoir है, उस energy का source है, जो कि corona को गर्म कर रही है. अब अगला सवाल ये है कि यहाँ से एनर्जी कैसे निकाली जा रही है, राइट. व्हाट इज द एक्चुअल मैकेनिज्म. उसके लिए भी कुछ थियरीज जो हैं, कुछ हाइपोथेसिस लोगों ने दिए हैं. उनमें से एक कहलाता है नैनो फ्लेयर हाइपोथेसिस. मान लीजिए आपके पास एक रबर बैंड है. मैं उसको तोड़ता मोड़ता रहता हूँ, उसको ट्विस्ट करता रहता हूँ, तो इवेंचुअली वो टूटेगा.
1: True.
0: है ना, कब तक वो सहता रहेगा. है ना, उसी तरह से जो हमारा सूरज का जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी रूट्स जो है वो फोटोस्फीयर में, जो सूरज की सतह हमें दिखाई देती है वहां पे. फोटोस्फीयर एक उबलते हुए पानी की तरह है, वहां पे लगातार कन्वेक्शन चालू है. नीचे से गर्म मटेरियल ऊपर आ रहा है, ऊपर से जो ठंडा हुआ वो नीचे जा रहा है. उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आप एक दूसरे को धक्का मारता रहता है, ट्विस्ट करता रहता है, टर्न करता रहता है, उसमें तरह तरह के बल पड़ते रहते हैं. तो ऐसा इनडेफिनेटली तो नहीं हो सकता. कभी ना कभी तो उस मैग्नेटिक फील्ड को, अपने आप को तोड़ के, वो एनर्जी थोड़ी सी रिलीज करके अपने आप को फिर से जोड़ना पड़ेगा.
1: तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं?
0: इस प्रोसेस को हम मैग्नेटिक रिकनेक्शन कहते हैं.
1: मैग्नेटिक रिकनेक्शन.
0: ठीक है. सो द आइडिया इज कि देर आर मेनी मेनी एपिसोड्स ऑफ मैग्नेटिक रिकनेक्शन गोइंग ऑन ऑल ओवर द सन, बिकॉज दिस कन्वेक्शन इज हैपनिंग ऑल ओवर द सन. मैग्नेटिक फील्ड इज बीइंग ट्विस्टेड ऑल ओवर द सन. सो एवरीवेयर इट नीड्स टू इवेंचुअली रिलैक्स अ लिटिल बिट. सो individually these episodes of reconnection are so small that our telescopes are not able to see their signatures. But collectively they are still putting in enough energy into the corona that the corona is being heated up to this million kelvin temperature. तो उसका budget calculate करो अगर, तो magnetic field में इतनी क्षमता है कि वो उसको heat, ना सिर्फ heat कर सके एक बार, वो हीट तो कोरोना लगातार रेडिएट करता रहेगा, तो आपको लगातार उसको गर्म करते रहना पड़ेगा, मेंटेन भी करते रहना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कर सकता है. तो इसको कहा जाता है नैनो फ्लेयर हाइपोथेसिस. दूसरा एक हाइपोथेसिस है जो ये कहता है कि द सेम कन्वेक्शन विच इज हैपनिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द सन, ये मैग्नेटिक फील्ड को हिलाती डुलाती रहती है. मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक अ स्ट्रिंग अंडर टेंशन. जैसे मान लीजिए मेरी गिटार का स्ट्रिंग है, अब गिटार को के स्ट्रिंग को मैं स्ट्राइक करता हूँ तो आवाज आती है.
1: True.
0: Because there is a wave which is traveling along that. Waves can carry energy. There is no problem with thermodynamics. मैं ठंडी जगह से वेव शुरू डिसिपेट कर सकता हूँ, वहां पे पहुंचा दी मैंने एनर्जी ठंडी से गर्म जगह. है ना, सो दैट इज द अदर वे ऑफ डूइंग इट, दैट देर इज दीज वेव्स विच आर सेटअप इन द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ कन्वेक्टिव मोशंस. ये वेव्स जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ चलती हैं. दीज आर वेव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड्स, दे आर कॉल्ड एल्फविन वेव्स आफ्टर द साइंटिस्ट हू फर्स्ट डिस्क्राइब देम इन डिटेल एंड देन दे डिसिपेट. वेव डिसिपेट हो गई तो उसकी एनर्जी वहां पे गर्मी में बदल जाएगी. अभी थोड़ी परेशानियां हैं, ये दोनों हाइपोथेसिस बहुत बढ़िया हैं, बहुत कारगर तरीके हैं, थियोरेटिकली दोनों काम कर सकते हैं, दोनों के साथ थोड़ी थोड़ी परेशानी है. तो हम बहुत समय से नैनो फ्लेयर्स ढूंढ रहे हैं,
1: ऑब्जर्वेशनली
0: ऑब्जर्वेशनल सिग्नेचर्स, और उस यू नो उस तलाश में पहले से बेहतर, उससे और बेहतर और बेहतर इंस्ट्रूमेंट हम बनाते जा रहे हैं. अब हम उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी नैनो फ्लेयर्स की वहां तक हम देख सकते हैं. ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं फ्लेयर्स उस एनर्जी की, नैनो फ्लेयर्स यू कैन ऑब्जर्व, बट दोज नैनो फ्लेयर्स डोंट सीम टू बी हैपनिंग इन इनफ नंबर्स टू गिव राइज टू सफिशिएंट कोरोनल हीटिंग. दे आर ऑल्सो नॉट हैपनिंग ऑल ओवर द सन. कोरोना तो सब जगह गर्म है, तो नैनो फ्लेयर्स को भी सभी जगह होना चाहिए. दीज नैनो फ्लेयर्स सीम टू बी फॉलोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज एक्टिव रीजन, जो हमने कहा था ना 35-40 डिग्री से शुरू होते हैं और फिर इक्वेटर की तरफ आते हैं. तो जहां जहां पे वो एक्टिव रीजन हैं रफली उसी इलाके में या उन्हीं रफ एरियाज में, कि मतलब 40-50 डिग्री के ऊपर कभी नहीं देखे गए, इस इलाके में हो रहे हैं. सो वाइल दे मे बी अ पार्ट ऑफ द आंसर, दे कैनॉट बी द कंप्लीट आंसर. सिमिलरली फॉर वेव्स, अभी वेव से हमारी क्या उम्मीद है, वेव्स को देखना के लिए ऑब्जर्वेशनली बहुत मेहनत करनी पड़ती है. तो बहुत बढ़िया यू नो एक्सट्रीमली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स एंड कैलिब्रेशन एंड एनालिसिस एल्गोरिदम्स हैव बीन डेवलप्ड टू बी एबल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ दीज वेव्स एंड वी कैन सी देम एंड वी कैन सी देम ऑलमोस्ट एवरीवेयर. द प्रॉब्लम हाउएवर इज दैट दे डोंट सीम टू डाई. अभी मेरा एनर्जी ऊपर तक पहुंचाने का क्या तरीका था कि मैं वेव को यहां से लूंगा आगे जाके डिसिपेट करूंगा. अगर वो डिसिपेट नहीं हो रही तो मतलब इट इज नॉट गिविंग अप इट्स एनर्जी,
1: इट्स कैरिंग इट इवन बियॉन्ड,
0: इट्स ऑलरेडी कैरिंग इट इनटू अ रीजन व्हिच इज हॉट. वहां तक तो उसी गर्मी से तो उसी एनर्जी से तो मुझे उसको गर्म करना था, बट इट इज नॉट गिवन अप इट्स एनर्जी. सो देयर इज समथिंग, सो वेव्स आर ऑल्सो नॉट सफिशियंट. Now there are ways out of both of these, that there is another population of even smaller flares which we are not able to see. Similarly, there are you know even smaller amplitude waves which we are not able to detect. All those things are certainly possible. The reason why I am very interested in using radio waves is that radio waves can detect signatures of much weaker flares as compared to those which can be detected in optical or x-rays or UV.
1: I see.
0: ठीक है, तो ये रेडियो वेव्स की एक खास बात है जिसकी वजह से मैं बहुत you know, कई सालों से मैं ढूंढ रहा हूँ इनको. या
1: तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इससे बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, बट आई गेस फिर हम बहुत ज्यादा टेक्निकल उसमें चले जाएंगे. तो अभी मैं बात करना चाहती हूँ कि ये जो इतनी सारी रिसर्च हो रही है आप एनसीआरए में कर रहे हैं और इंडिया में और कहाँ कहाँ पे सन के बारे में रिसर्च हो रही है, या फिर हिस्टोरिकली ऐसे कौन सी डिस्कवरीज रही हैं जो इंडिया की तरफ से हुई हैं सोलर फिजिक्स के लिए, या फिर कौन से हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं?
0: इंडिया में सोलर फिजिक्स बहुत समय से की जा रही है. हाँ, कुछ मतलब लेट्स से वेल बिफोर इंडिपेंडेंस की जा रही है. अभी हाल ही में कोडाईकनाल ऑब्जर्वेटरी ने अपनी 125वीं वर्षगांठ मनाई, राइट? तो वहां से तो सर्टनली की जा रही है, और कुछ बहुत ही वेल नोन इफेक्ट्स हैं जो कि उस ऑब्जर्वेटरी द्वारा जो वहां पे डिस्कवर किए गए थे. इस जो कोडाईकनाल ऑब्जर्वेटरी है, एक इंस्टीट्यूट है बैंगलोर में जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स. वो इंस्टीट्यूट जो है इस ऑब्जर्वेटरी को चलाता है. भारत में शायद सबसे बड़ा ग्रुप सोलर फिजिसिस्ट्स का उस ऑब्जर्वेटरी में है. उसके अलावा बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं भारत में जहाँ पे कि छोटे बड़े ग्रुप्स हैं सोलर फिजिक्स करने के लिए. कई ऑब्जर्वेटरीज हैं जो कि सोलर फिजिक्स के लिए डेडिकेटेड हैं, जैसे उदयपुर में एक उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी है जो कि फिजिकल रिसर्च लैब अहमदाबाद जो जिसको चलाता है. तो वहाँ पे भी एक बड़ा ग्रुप है साइंटिस्ट्स का जो कि सूरज के अध्ययन पे ही फोकस करते हैं. उसी तरह एरीज जो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है नैनीताल में, वहां पर भी सोलर एस्ट्रोनॉमर्स का एक ग्रुप है. मैं आपको सिर्फ ऐसी जगह के नाम बता रहा हूँ जहाँ पे बड़े ग्रुप्स हैं. इंडिविजुअल सोलर एस्ट्रोनॉमर्स भारत के आई थिंक आई डोंट नो मेनी टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस विल हैव सोलर एस्ट्रोनॉमर्स देयर हियर. सो वी हैव अ बिग प्रेजेंस. नॉट ओनली वी हैव अ बिग प्रेजेंस, वी हैव अ वेरी डाइवर्स सेट ऑफ पीपल जो कि सूरज का अध्ययन बहुत अलग अलग तरह से करते हैं. अभी हाल ही में हमने आदित्य L1 को लॉन्च किया जो कि भारत का पहला डेडिकेटेड सैटेलाइट है जो कि सूरज के अध्ययन के लिए ही बना है, है ना. इसके जो पेलोड्स थे वो सब भारत में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस द्वारा बनाए गए. देयर आर लार्ज टीम्स ऑफ साइंटिस्ट्स व्हिच आर वर्किंग फॉर ईच ऑफ दोज पेलोड्स एंड द होल सैटेलाइट. तो ऑब्जर्वेटरीज बनाने से लेकर डेटा वहां से गैदर करने का, थियोरेटिकल फिजिक्स में, थियोरेटिकल सोलर फिजिक्स में काम करने का, कि ये जो 11 साल की साइकिल है उसके पीछे सोलर डायनमो का हाथ है, वो साइकिल कैसे काम करती है, वो जो स्पेस वेदर है उसकी प्रिडिक्शन कैसे की जा सकती है, वो स्पेस वेदर सूरज से शुरू होकर पृथ्वी तक कैसे पहुंचता है, अलग अलग वेवलेंथ्स में हम सूरज का अध्ययन करके कैसे हम ये चीज़ें पता लगा पाते हैं लगभग सभी वेवलेंथ रेंज में और इंस्ट्रूमेंटेशन में और थियोरी में भारत में जो टक्कर के क्या कहना चाहिए सौर्य साइंटिस्ट हैं, सोलर साइंटिस्ट आर देयर. एंड व्हाट हैज आल्सो हैपेंड लेटली इज दैट वी स्टार्टेड टू वर्क अ लिटिल मोर क्लोजली सो दैट you know together we can do a little bit more than what we were able to do individually.
1: collaborative efforts amazing
0: yeah.
1: So ye janna bahut important hai kyunki bahut bar hame pata hi nahi hota hai ki aisi research bhi ho rahi hai India mein jo hamare listeners hain they can look for these options. Abhi humne sun ke bare mein bahut acche se baat kar li. Sun is magnificent. Bahut sare acche acche phenomena ho rahe hain. So I work in galactic साइंस, राइट, लाइक गैलेक्टिक एस्ट्रोफिजिक्स इफ यू कैन से इन दैट वे. तो जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पे ये मैंने बहुत बार सुना है कि सन इज एन एवरेज स्टार. और जब भी मैं किसी सोलर फिजिसिस्ट के आगे ये बात बोल दूँ तो मैं नेगेटिव वे में नहीं बोलना चाहती तो मुझे बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस मिलते हैं. बट सन इज एन एवरेज स्टार, है ना.
0: करेक्ट.
1: तो जो हम सन को स्टडी करते हैं क्या उससे हमें हेल्प मिलता है बाकी स्टार्स के बारे में स्टडी करने में भी, उनके बारे में भी क्या हम जान पाते हैं कि उनमें क्या हो रहा होगा.
0: बिल्कुल. तो मैं सबसे पहले तो मैं आपसे सहमत हूँ कि सन इज एन एवरेज स्टार एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग एवरेज. सन इज आवर फेवरेट स्टार क्योंकि सूरज नहीं होता तो पृथ्वी पे जीवन नहीं होता.
1: आई टोटली एग्री,
0: है ना. सो वी ओ आवर लाइव्स टू द सन एंड सन इज द क्लोजेस्ट स्टार. तो सूरज को हम जिस डिटेल में स्टडी कर सकते हैं उस डिटेल में तो हम किसी और स्टार को स्टडी नहीं कर सकते, है ना. इक्के दुक्के को छोड़ के बाकी सब तारे तो सिर्फ बिंदु की तरह हमें दिखाई देते हैं. सिर्फ दो चार तारे हैं जिनका सरफेस हम थोड़ा सा रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना, जो हमारे लिए डॉट नहीं है, एक छोटा सा सर्कल है, राइट. सूरज को हम खूब डिटेल में देख सकते हैं. सूरज से जो प्लाज्मा निकल रहा है उसको हमारे सैटेलाइट सैंपल कर सकते हैं. अब पार्कर सोलर प्रोब अब लगभग 10 सोलर रेडियाई तक पहुंच गई है जिसको वो यू नो टचिंग द सन जिसको बोलते हैं वो. वी कैन डू दैट. सो देर इज अ होल लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच वी कैन गैदर फ्रॉम द सन विच इज सो मच मोर डिटेल्ड देन वी विल एवर बी एबल टू गेट फॉर एनी अदर स्टार, ठीक है. सो दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड अदर स्टार्स इन डिटेल बिकॉज सन बींग एन एवरेज स्टार इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ लॉट ऑफ स्टार्स. So it gives us a place to test our stellar theories in detail.
1: True.
0: हाँ, उनको अगर हम verify कर पाते हैं तो उसका impact फिर बाकी सब stars के अध्ययन पे होता है, है ना. So sun is very useful in that sense. Sun is also very useful in giving us a plasma laboratory which we cannot create on earth. जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि 8 particles per centimeter cube, इतना बढ़िया vacuum हम बना नहीं सकते. डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज 150 मिलियन किलोमीटर्स. इतना लंबा रन वे फॉर अ प्लाज्मा वेव और वॉट एवर प्लाज्मा इज फ्लोइंग वी कैन नॉट क्रिएट ऑन द अर्थ. सो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ लेंथ स्केल्स, इन टर्म्स ऑफ टाइम स्केल्स, देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग ऑन द सन which create for us opportunities to study matter under situations which terrestrial labs can never produce. So it's a beautiful way of advancing physics and also of understanding stars, other stars.
1: Yeah. Also.
0: Correct.
1: Yeah. I guess being average is very useful here in this context.
0: Yes. Yeah.
1: Amazing. So, अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मेरे मन में हैं और आई गेस लिसनर्स के मन में भी होंगे, बट आई नो यू हैव टाइम कमिटमेंट्स एंड तो मैं थोड़े से फन क्वेश्चंस की तरफ जाना चाहती हूँ.
0: जरूर. या
1: आप बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते रहते होंगे, तो मोस्ट कॉमन सुपरस्टिशंस अबाउट सन ऐसी क्या हैं जो आपने फेस की हों, जिसको सुन के आपको लगा हो कि ये क्या पूछ रहा है?
0: सबसे तो सबसे कॉमन जो एक तो सबसे पहले किसी को अगर पता लगता है कि आप एस्ट्रोनोमर हैं तो बहुत से लोगों का ध्यान एस्ट्रोनॉमी की तरफ नहीं एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाता है.
1: राइट.
0: तो सबसे पहले तो वो समझाना पड़ता है कि नहीं, एस्ट्रोनॉमी अलग है, एस्ट्रोलॉजी अलग है. और उस पर मुझे थोड़ा थोड़ा कभी आश्चर्य होता है कि इतना डीप सीटेड बहुत से लोगों के मन में विश्वास है कि ये जो ग्रह, तारे, सूरज, चंद्रमा, इनकी स्थिति से उनके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा. राइट. एक तो दुनिया में क्या सिर्फ बड़े वो 12 ही तरह के लोग हैं कि हर किसी को एक किसी ना किसी एक डब्बे में डालना पड़ेगा. दूसरा, सूरज चांद ग्रहों को क्या परवाह है हमारी? राइट. उन्होंने जो करना है सो तो करना ही है. तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगता है सोच के कि बहुत से हमारे साथी अभी ऐसे हैं जो इस पर विश्वास रखते हैं. जहाँ तक मेरी समझ गई है, ऐसा कोई कारण नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिस वजह से इन ग्रहों की, सूरज चांद वगैरह की जो स्थिति है उससे मानवों के व्यवहार पर, उनके जीवन पर, उनकी किस्मत कैसे होने वाली है, इस पर किसी तरह का कोई भी प्रभाव पड़ सकता हो.
1: That's very important. I guess what you have addressed is a huge issue, especially for a country like us. Not only country like us, it's all over the place, I guess. And all that also people from all classes.
0: Yes.
1: That's something unites us in a very, very wrong way. Okay. So I hope ऐसी conversations अगर बाहर जाएंगी उनको पता चलेगा कि हमारे इंडिया में ऐसी रिसर्च हो रही है, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ हेवनली बॉडीज नहीं है, उनके बारे में अध्ययन किया जा सकता है, उनके बारे में समझा जा सकता है, उनके बारे में पढ़ा जा सकता है, तो शायद थोड़ा थोड़ा चेंज आना शुरू होगा.
0: जरूर है.
1: और उसके बाद एक और फिनोमिना है जो कि बहुत लोग जिसके बारे में जिससे डरते हैं, आई गेस यू वुड गेस, सोलर इक्लिप्स.
0: करेक्ट.
1: तो उसके और आसपास भी आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: या सोलर इक्लिप्सेस आर अ मैग्निफिशेंट शो ऑफ नेचर, और जिंदगी में थोड़े से ही बार आपको वो देखने का अनुभव मिलेगा. तो जब भी आपको मौका मिले अगला सोलर इक्लिप्स देखने का, प्लीज आप उस मौके का जितना फायदा उठा सकते हैं उठाए. सूरज को हमेशा बहुत ध्यान से देखना चाहिए, है ना, कभी सीधा आँख से नहीं देखना चाहिए. तो जो भी अप्रोप्रिएट फिल्टर्स हैं उसके लिए, सूरज को देखने के लिए, उनका प्रयोग करें या उस सूरज की प्रोजेक्शन को देखें. लेकिन इतना सुंदर दृश्य आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कम बार देखने को मिलेगा. सो प्लीज़ आप जाके उसका आनंद लें अपने परिवार वालों के साथ, प्रियजनों के साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, जिनके साथ जा सकते हैं उनके साथ जाके आप इसका आनंद लीजिए. और उसको आप एक पर्व की तरह मना सकते हैं, फेस्टिवल. राइट. इट्स अ वे, इट्स अ रीजन टू गेट टुगेदर एंड एन्जॉय समथिंग. या इसका आप पर कोई कुप्रभाव नहीं है. सूर्य के ग्रहण में, सूर्य का ग्रहण क्या है? सूर्य का ग्रहण इसलिए हुआ है क्योंकि सूरज की रोशनी आप तक इसलिए नहीं पहुंच पा रही क्योंकि बीच में चंद्रमा आ गया है ना. तो सूर्य ग्रहण सिर्फ एक परछाई है. जब पृथ्वी पर रात होती है तो वो भी परछाई है क्योंकि सूर्य दूसरी तरफ है, सूर्य की रोशनी आप तक पहुंच नहीं पा रही, वो परछाई है. आधी जिंदगी हम अपनी परछाई में बिताते हैं, है ना. सूर्य ग्रहण सिर्फ कुछ मिनटों के लिए होता है, पूरे मिनट के लिए भी नहीं होता कई बार, तो वो भी एक परछाई है. उस दौरान ऐसा कुछ नहीं है कि सूर्य में से कुछ ऐसा निकल रहा है जो पहले नहीं निकलता था. सूर्य में से सदा वही निकल रहा है जो पहले से निकलता आ रहा था, ग्रहण से पहले भी, ग्रहण के दौरान भी, ग्रहण के बाद में भी। बस ग्रहण के दौरान वो रोशनी आप तक पहुंच नहीं रही है। तो रोशनी के ना पहुंचने से तो आप पे कोई नुकसान नहीं हो सकता। आधी जिंदगी जैसा हम कह रहे थे कि हम रात को बिताते हैं, तब सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती हम तक। जैसा अस्तित्व हमारा तब है, जैसा सूर्य का प्रभाव हमारे ऊपर तब है, वैसा ही ग्रहण के दौरान है। तो मेरे हिसाब से इट इज़ अ ब्लेसिंग। इतना सुंदर दृश्य देखने को मिलता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सच में किसी क्लाउड फ्री जगह से जाके एक टोटल सोलर इक्लिप्स या एनुलर सोलर इक्लिप्स को देखेंगे। सो प्लीज़ अगर आपको इसका मौका मिलता है तो ज़रूर उसका आनंद लीजिए, उसका फ़ायदा उठाइए।
1: थैंक यू सो मच, आपने इसको इतने अच्छे से एड्रेस किया है। आई गेस लोगों को थोड़ा तो समझ में आएगा और वी होप चेंज धीरे धीरे हम ये देखना शुरू करेंगे। और कुछ कुछ बार ऐसा होता है कि लोग मुझसे आके पूछते हैं कि अच्छा ये आप क्या बता सकते हैं कि एग्जैक्ट टाइम पे कब एक्लिप्स शुरू होगा, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि अरे दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू नोइंग अबाउट द एक्लिप्स। बट फिर मुझे पता चलता था कि वो उसी एग्जैक्ट टाइम पे वो अपने रिचुअल स्टार्ट करना चाहते होते हैं कि कब उनको खाना खाना बंद करना है, ऑल दोज थिंग्स। सो बट आई होप द वे यू हैव एड्रेस्ड इट सो ब्यूटिफुली इट विल ब्रिंग सम चेंज।
0: आई एम श्योर, आई थिंक चेंज इज हैपनिंग।
1: No, I agree.
0: So there is no doubt about that. It will take time, but it is happening. Yeah.
1: तो आप इतनी fascinating study है sun के बारे में, इतने अच्छे-अच्छे aspects आपको जानने के लिए मिलते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने इसके बारे में research करना कैसे शुरू किया, आपकी journey कैसे रही, how you got into this field?
0: Okay, तो आपका सवाल था कि मेरी journey कैसी रही। So now when I look back, it seems like, a series of coincidences. So, मैं एक बहुत ही साधारण से परिवार से हूँ। मेरे माता पिता का जीवन बहुत मुश्किल रहा शुरुआत में। वो दोनों, उनके परिवार जो अब पाकिस्तान में छूट गया, वहाँ से आए थे, बहुत मुश्किल दिन उन्होंने देखे थे। तो वो चाहते थे कि उनके बेटे का थोड़ा सिक्योर करियर हो, तो वो इंजीनियर बनाना चाहते थे मुझे। मेरी उस दिशा में जाने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन मुझे साइंस पसंद थी, तो मैं बीएससी की तरफ मेरा ध्यान मुड़ा। बीएससी में मुझे कुछ ऐसे दोस्त मिले जो कि जिन्होंने मेरे करियर पे बहुत बड़ा प्रभाव डाला। उनमें से एक मेरे सीनियर थे एक साल, उनको बीएससी में एक प्रोजेक्ट करना था, उनको प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी मदद चाहिए थी, तो उन्होंने मुझे और एक और दोस्त को रिक्रूट किया उसके लिए। वो प्रोजेक्ट था लाइट की स्पीड मेजर करना, हाँ, समथिंग कॉल्ड रीमर्स एक्सपेरिमेंट। सो आइडिया ये है कि आप जुपिटर के भी कई मून हैं, कई ग्रह हैं, उसके चंद्रमा हैं जो उसके आसपास घूमते हैं, उनमें से चार आप आसानी से देख सकते हैं छोटे से टेलीस्कोप से भी। तो आप जुपिटर के जो मून हैं उनके एक्लिप्सिस का, कि वो कब जुपिटर के पीछे गया और कब दूसरी तरफ से निकला, उसका आप एग्जैक्ट टाइम नोट करेंगे और कम से कम 6 महीने तक नोट करेंगे, ताकि पृथ्वी अपने ऑर्बिट पे काफी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर ले। और फिर आप ये जानकारी इकट्ठा करके कि पृथ्वी कहाँ पे थी, जुपिटर कहाँ पे था, जुपिटर का चांद कहाँ पे था, एक्लिप्स कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, ये सारी जानकारी का प्रयोग करके आप स्पीड ऑफ लाइट एस्टिमेट करेंगे। दैट इज हाउ स्पीड ऑफ लाइट वॉज फर्स्ट एस्टिमेटेड। दिस प्रोजेक्ट वॉज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस फॉर मी। हम लोगों के पास पैसे वैसे नहीं थे, तो टेलीस्कोप अपना खुद बनाना था। ये जो मेरा सीनियर था वो बहुत रिसोर्सफुल आदमी था, वो कहीं से सब जुगाड़ ढूंढ के लाया कि ब्लैंक जो मिरर बनेगा वो कहाँ से मिलेगा, उसको कैसे ग्राइंड करेंगे। वो काम हमने सारा खुद किया, तो अपने हाथ से,
1: बिल्कुल फ्रॉम
0: हाँ। तो वो उसकी कारपेंटरी करके हमने वो स्टैंड बनाया। आई वॉज गुड विद हैंड्स, तो वो सब बनाने में मेरे को बड़ा मजा आया। एंड इट वॉज वेरी पावरफुल, कि ये तो बहुत आसान था, इन सम सेंस आसान था, कि चीजें उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं चाहिए थी। आइडिया वॉज सिंपल एंड लुक एट वॉट वी डिड, वी वर एबल टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइट। दैट इज अ ह्यूज थिंग, इट इज सच अ डिफिकल्ट क्वांटिटी टू मेजर द स्पीड ऑफ। तो उससे मुझे पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमी का एहसास हुआ। और एज इट हैपेंड उस दौरान मैं शर्लॉक होम्स बहुत पढ़ता था। So it seemed to me like, यू नो यू आर नाउ प्लेइंग डिटेक्टिव विद द यूनिवर्स.
1: तो
0: मुझे लगा कि यही करना चाहिए जिंदगी में. तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई. तो धीरे धीरे वहाँ से मैं थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करता गया. एंड फॉर्चुनेटली इट वर्कड आउट कि बीएससी के बाद एमएससी के बाद मुझे भारत में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था उन दिनों. इट वाज कॉल्ड जॉइंट एस्ट्रोनॉमी प्रोग्राम जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर उसको रन करता था. तो उसमें मेरी किस्मत थी कि मेरे को उसमें एडमिशन मिला. वहाँ पहुँचा. एक साल वहाँ कोर्स वर्क करने के बाद मैं एमसीआरए पहुँचा आगे की पीएचडी करने के लिए. वहाँ रेडियो एस्ट्रोनॉमी सीखने का मौका मिला. वहाँ पे मैं इसलिए गया था क्योंकि मुझे ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी करनी थी, क्योंकि मेरी शुरुआत हुई थी वो एक्लिप्स की टाइमिंग से. तो ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी में बहुत मज़ा आता था. और उस वक्त भारत का सबसे एक्साइटिंग ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी प्रोजेक्ट वॉज बिल्डिंग ऑफ जीएमआरटी, the giant meter wave radio telescope, which is still the world's among the world's most sensitive radio telescopes in its frequency of operation. वहाँ पहुँचा. वहाँ बहुत मज़ा आया पीएचडी करने में. पीएचडी करने के बाद थोड़ा कुछ रस्तों से होता हुआ मैं एक पोस्ट डॉक के लिए एमआईटी पहुँचा. वहाँ पे मेरा काम था एक नया इंस्ट्रूमेंट, लो रेडियो फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट उस वक्त डिज़ाइन हो रहा था. उस डिज़ाइन टीम का हिस्सा बनना मेरा काम था. उसके लिए कुछ साइंस एरियाज आइडेंटिफाई किए गए थे. सोलर रेडियो फिजिक्स उनमें से नहीं था. तो वहाँ पे उनके जो डायरेक्टर थे इस इंस्टीट्यूट के, उनसे मेरी बात हो रही थी. तो मैंने उनको कहा कि इसमें हम ये साइंस तो करना चाहते हैं लेकिन सोलर फिजिक्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन सोलर फिजिक्स के लिए ये बहुत बढ़िया टेलीस्कोप है. तो उनका कहना था कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम लिखो एक प्रपोजल, फंडिंग प्रपोजल लिखो, फंडिंग मिल जाती है तो यू कैन लीड इट. तो मैंने आई टुक इट अप एज अ सॉर्ट ऑफ चैलेंज. तब सोलर फिजिक्स मैंने आई हैड नॉट फॉर्मली स्टडीड सोलर फिजिक्स.
1: सो यस सॉरी टू इंटरप्ट यू, तो आपने आपका जो पीएचडी है उसमें आपने सोलर फिजिक्स नहीं स्टडी किया था?
0: या हाँ, मेरी पीएचडी की कहानी थोड़ी सी अलग थी. मैं जीएमआरटी आया था. जीएमआरटी को कमीशन होने में बहुत समय लग रहा था, तो इसलिए जो मेरे सुपरवाइजर थे उन्होंने मुझे किसी दूसरे टेलीस्कोप पे भेजा, ऊटी रेडियो टेलीस्कोप पे. वहां से मेरा सूरज का अध्ययन तो नहीं लेकिन सोलर विंड के अध्ययन पे मेरी पीएचडी थी. तो थोड़ी थोड़ी जानकारी मुझे सूरज के बारे में थी, बहुत ज्यादा नहीं थी. तो ये दूसरी जगह पहुंच के, एमआईटी पहुंच के, मुझे लगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया टेलीस्कोप है सूरज के अध्ययन के लिए. तो फिर वहां मैंने सोलर फिजिक्स सीखने की कोशिश की, उसके सहारे वो प्रपोजल्स बनाए. अनफॉर्चुनेटली दे वर सक्सेसफुल.
1: तो ये नासा का हिस्सा था, ये जो स्पेस मिशन?
0: नहीं, ये स्पेस मिशन नहीं था. अच्छा, ये ग्राउंड बेस्ड मिशन है. तो ये कई देशों की कोलैबोरेशन थी. या उस प्रोजेक्ट का नाम अब मर्चिसन वाइड फील्ड अरे है. ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है. या
1: जिसको फेमसली एमडब्ल्यूए
0: बोलते हैं.
1: तो उसके बाद फिर
0: गाड़ी चल पड़ी. एक बार मतलब वहां पहुंच गए, वहां पे मुझे समझ में आया कि क्या क्या कर सकते हैं हम इस टेलीस्कोप से. फिर धीरे धीरे और सीखते हुए, और क्योंकि मैं टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन का कोर टीम का हिस्सा था, वो टेलीस्कोप बनाने में बहुत समय लगा. 2004 में हमने शुरू किया, 2013 में पहली बार डेटा मिला उस टेलीस्कोप से. तो उसके बाद से, तो एक बार डेटा आना शुरू हुआ, डेटा का एनालिसिस थोड़ा सा हम समझ पाए कि कैसे किया जाएगा, फिर गाड़ी चल पड़ी अपनी. तो उसके बाद एक के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें अभी भी सीखने को मिल रही हैं इस टेलीस्कोप से, सोलर विंड और सूरज के बारे में रादर.
1: तो आफ्टर दैट यू स्टार्टेड कंप्लीटली वर्किंग
0: इन द फील्ड ऑफ सोलर फिजिक्स. उसके बाद से अब मुझे और इंस्ट्रूमेंट्स की तलाश है जहां से हम सोलर फिजिक्स कर सकते हैं. तो अभी हाल ही में हमने मीरकैट नाम से एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एसके का प्रीकर्सर है, एसके मिड का. वहां से हमारे प्रयासों की वजह से, हमारे ग्रुप के प्रयासों की वजह से पहली बार अब वो सूर्य के अध्ययन के लिए पूरी दुनिया को उपलब्ध है. सो वी आर डूइंग दैट. एक यूरोप में टेलीस्कोप है लोफार नाम से. जो कुछ हमने एमडब्ल्यूए से सीखा वो लोफार पे इस्तेमाल करके वहां पे सूरज की इमेजिंग क्वालिटी हम पहले के मुकाबले 10 से भी ज्यादा गुना इम्प्रूव कर पाए हैं. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग वी आर परस्यूइंग. और जो हमारे घर का अपना टेलीस्कोप है जीएमआरटी, वो भी कुछ खास तरह की सोलर स्टडीज के लिए बहुत उपयुक्त है. उससे बेहतर नहीं है कोई टेलीस्कोप उस खास काम के लिए.
1: अभी भी नई डिस्कवरीज आ रही हैं वहां से भी.
0: अभी भी वहां से नई डिस्कवरीज आ रही हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग आई थिंक इज दैट विद दीज न्यू काइंड्स ऑफ टेलीस्कोप्स, वी आर एबल टू पुट द सन अंडर अ माइक्रोस्कोप नॉट अ टेलीस्कोप. तो हम उसको इतना डिटेल में अब देख पा रहे हैं, जैसे कि यू नो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है ना किसी का, तो उसके बाद जो ना दुनिया सारी ब्राइट हो जाती है, बहुत सारा डिटेल नजर आना शुरू हो जाता है. उसी तरह से हमें सूरज में अभी ऐसी डिटेल्स नजर आ रही हैं, ऐसी चीजें होती नजर आ रही हैं जो पहले कोई देख नहीं पाया क्योंकि उनकी आंखों में थोड़ा सा धुंधलापन था. वो धुंधलापन हमारे नए टेलीस्कोप्स ने दूर किया, तो उसकी वजह से बहुत सी नई चीजें अभी निकल के आ रही हैं.
1: तो अपने मीरकैट कमीशन किया और आई थिंक हम अगर हम SKA के बारे में थोड़ी सी बात कर लें तो बहुत अच्छा होगा. तो SKA जैसे सब जानते हैं कि लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है जो भी अवेलेबल है, तो आप भी उसकी रिसर्च टीम का हिस्सा हैं
0: जी.
1: तो अब क्या आप हमें थोड़ा सा SKA के बारे में और SKA सोलर फिजिक्स के बारे में कौन से रिसर्च टॉपिक्स को स्टडी करेगा उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं?
0: तो SKA जैसा अधिकतर शायद आपकी ऑडियंस पहले ही जानती होगी, स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी, राइट. ये असल में दो टेलीस्कोप हैं, एक इनमें से ऑस्ट्रेलिया में बनेगा जो SKA लो कहलाता है, दूसरा SKA मिड कहलाता है जो साउथ अफ्रीका में बनेगा. SKA लो लगभग 50 से 350 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करेगा, SKA मिड लगभग 400 से आई थिंक 15 गीगाहर्ट्ज तक इवेंचुअली वो जाएगा. नाउ ये दोनों ही टेलीस्कोप, ओके लेट मी टेक वन स्टेप बैक. मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ये जो नए टेलीस्कोप है ना, इनकी हमारी आंखों का धुंधलापन इन्होंने दूर किया. जिस कारण की वजह से उन्होंने वो धुंधलापन दूर किया है, SKA उस कारण को कई गुना आगे लेके जाता है, ठीक है. तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि जब हम SKA से सूरज को देखेंगे तो हमें और भी कई ऐसी चीजें नजर आएंगी जो अभी तक हमें देखने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि यू नो वो धुंधलापन इन नए इंस्ट्रूमेंट्स में भी है, पहले के मुकाबले कम है लेकिन SKA में और भी कम होगा.
1: टोटली अननोन थिंग्स वी विल गेट टू नो.
0: यस, वी विल बी, इसको अगर हम थोड़ी सी टेक्निकल भाषा में बोलें, वी विल बी एक्सप्लोरिंग अ फेस स्पेस व्हिच हैज नेवर बीन एक्सप्लोर्ड बिफोर, which we were doing with these new instruments also, but we are just extending that phase space into areas which were never accessible to us before. So there is very much a potential for new discoveries, for finding things which we have not anticipated. On the, so that is one aspect. On the other hand, we know, we are expecting many things. कि ऐसा, अगर ये hypothesis ठीक है तो ऐसा होना चाहिए, वो ठीक है तो वैसा होना चाहिए, तो वो verification का scope है, वो काम तो होगा ही होगा. और उसके अलावा नई चीजें ऐसी निकल के आएंगी ही जो हमें अभी पता नहीं है.
1: तो जो अपने कोरोनल हीटिंग की शुरू में बात करी थी, क्या उसके बारे में भी कुछ चांसेस हैं कि हमें नई चीजें पता?
0: बिल्कुल, क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि रेडियो वेव्स में हमें उसके सिग्नेचर मिलने शुरू हुए हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका एटलीस्ट वन कंसिस्टेंट एक्सप्लेनेशन इज दैट दीज आर काउंटर पार्ट्स ऑफ समथिंग बीइंग यूज्ड फॉर कोरोनल हीटिंग. तो ये नए टेलीस्कोप इस्तेमाल करके, SKA इस्तेमाल करके हम इन स्टडीज को बेहतर रिफाइन कर सकते हैं, इनका स्टैटिस्टिक्स इम्प्रूव कर सकते हैं, ये कहाँ पे हो रही हैं, किस मात्रा में हो रही हैं, किस फ्रीक्वेंसी तक हो रही हैं, और इनको अगर हमने सिमुलेट करना है कि कोरोना में क्या हो रहा होगा जिसकी वजह से ये होगा, तो वो हम बेहतर कर पाएंगे. सो ऑल ऑफ दैट विल हेल्प अस गेट क्लोजर टू द आंसर ऑन कोरोनल हीटिंग.
1: Amazing. So I guess we all are looking forward to the future discoveries.
0: Absolutely, yes. Thank you.
2: The Milky Way, a podcast about the universe. Kanal K.